तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। ओ अल्लाह, सो मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड नाउ दैट वी शुड थिंक ऑफ अवरसेल्व्स एंड नॉट अदर्स। ओ अल्लाह, एवरीवन इन योर गार्डन इज अ फ्लावर, एवरीवन इज अ फ्लावर। The only thorn in the garden is myself. Tere gulistan mein sab gul hai, bas ek agar hoon to khar mein hoon. Mujhe bhi kuch fikr-e-akhirat ho, bahut hi ghaflat shihar mein hoon. रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में।

जैसे खुर्शीद हो आसमां में। या नबी ऑफ अल्लाह, योर पोजीशन इन दिस वर्ल्ड इज लाइक दैट ऑफ द सन इन द हेवंस, ब्राइट शाइनिंग सन। ओ माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द सिटी ऑफ मदीना शरीफ फ्रॉम वे इस्लाम स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज दिस वॉज कंपोज इन मदीना शरीफ। आपका मर्तबा इस जहां में जैसे खुर्शीद हो आसमां में।

सहारा सहारा नहीं, मुझको जीने का सहारा चाहिए, मुझको जीने का सहारा चाहिए। गम तुम्हारा दिल हमारा चाहिए, मुझको जीने का सहारा चाहिए। गम तुम्हारा दिल हमारा चाहिए, बहरे उल्फत का किनारा।